0: द मेन थिंग, हम किसी से शेयर नहीं करेंगे
1: जी
0: कि वो क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और या एवरीथिंग इज़ कॉन्फिडेंशियल. और जो रेफर भी करते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशंस को, वो भी ये कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ टेकन एज अ मेन थिंग.
1: जी
0: या
2: इस पे मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि कभी कभी हमारी टीम में भी हमें नहीं पता कि अंदर जो हमारा मीटिंग रूम है
1: जी
2: उसमें सोशल वर्कर के पास किसने कॉल किया है और केस क्या है, तो बाकी टीम मेंबर्स को भी नहीं पता होता. तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस.
1: जी, और आप खुद लोगों को कैसे अप्रोच करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में?
2: बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे हमसे पूछा है. हम कोशिश करते हैं कि जितने भी डिफरेंट छोटे छोटे कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं हमारे, वहाँ जाएं और उनको बताएं कि इंडियन केयर किस तरह से हेल्प कर सकती है आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स में. हम डिफरेंट वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी जाते हैं, वहाँ पे बताते हैं, लेकिन वो फिर उनके यू नो बॉल इज़ इन देयर कोर्ट कि वो उस इंफॉर्मेशन को आगे बताते हैं या नहीं बताते हैं. तो हम अपनी तरफ से तो काफ़ी कोशिश करते हैं, कम्युनिटी लीडर से जाके मिलते हैं कि आप हमारे सर्विसेज के बारे में बताइए अपने यू नो कम्युनिटी मेंबर्स को, या हम इतना करते हैं, लेकिन फिर वो उनके ऊपर होता है कि वो उस आवाज़ को कितना बुलंद करें.
1: जी, जैसे आप बहुत सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया या कितने लोगों की प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं ऑन एन एवरेज?
2: तकरीब हमें हर साल 300 कॉल्स आती हैं और उसमें से 80% महिलाएं होती हैं जो हमें बताती हैं, और उसमें से भी 80% जो कॉल्स वीमेन की होती हैं उसमें भी मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादातर फैमिली वायलेंस की होती हैं. और बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं जब विमेन को डिफरेंट मेन एजेंसीज में हेल्प नहीं मिल पाती है.
1: जी,
2: काफ़ी डिफरेंट इश्यूज होते हैं, जैसे लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है. तो हम उनके बिहाफ पे फिर मेन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं, ताकि वो ज़्यादातर क्या है कि कम्युनिटी मेंबर्स हमसे अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और फिर हम उसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं मेन एजेंसीज.
0: एडवोकेसी जैसा हो जाता है रोल, यू नो, क्योंकि कभी कभी मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटरप्रेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं और कहीं पे कुछ मिस हो जाता है यू नो कम्युनिकेशन में, तो देन दे कॉल अस कि मैंने बात तो करी पर वो समझ नहीं रहे हैं, आप हमारी हेल्प कर दीजिए. तो वी विल कॉन्टैक्ट द मेन सर्विसेज एंड ट्राई टू एडवोकेट फॉर दिस पर्सन.
1: जी, जैसे लोग हम बोलते हैं कि हमारे पास अपने दुख लेके आते हैं, तो कभी कभी वो हमें खुद भी अफेक्ट करते हैं. किसी की स्टोरी ऐसी होती है कि जो हमें पर्सनली टच कर जाती है, तो फिर आप खुद को उस सिचुएशन में कैसे बैलेंस रखते हो?
0: सी, एज अ सोशल वर्कर, एज अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर एंड इतने सालों से काम करते हुए, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सेल्फ केयर.
1: जी,
0: तो हम और सारी टीम को भी ये पूछते रहते हैं, भी एक दूसरे से बात भी करते हैं, आप ठीक हो, आपको बहुत डिफिकल्ट, यू नीड टू डीब्रीफ.
1: जी,
0: यू नो, सो वी डू दैट, एंड इफ देयर इज एनीथिंग प्लीज शेयर, प्लीज टॉक, यू नो, यू डोंट हैव टू कीप इट टू योरसेल्फ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू डोंट शेयर डिटेल्स ऑफ द पर्सन, बट यू कैन जस्ट शेयर दैट बहुत आज हैवी कॉल आ गई, यू नो आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, आई नीड सम स्पेस. एंड वी एनकरेज एवरीवन टू हैव देयर ओन वे ऑफ सेल्फ केयर.
1: जी
0: हाँ, चाहे वो आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता हो, या वॉक पे जाना अच्छा लगता हो, या फैमिली के साथ अपना टाइम बिताना है, या किसी इवन लाइक गो एंड टॉक टू समवन एल्स, यू नो, हु कैन हेल्प यू, या ट्रेनिंग करनी है या कुछ और ज़रूरत है, सो वी लुक इनटू ऑल दोस थिंग्स एज वेल, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल योरसेल्फ.
1: जी
0: हाँ, देन ओनली यू कैन हेल्प अदर्स और सपोर्ट अदर्स. या
1: जिन लोगों ने मतलब आपको ज्वाइन करना है, आपके साथ काम करना है,
0: हाँ जी,
1: तो उनको फिर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, या मतलब कि अगर उनके पास सोशल सर्विसेज की डिग्री है तो ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी और बैकग्राउंड के हैं वो मतलब सोशली हेल्प करना चाहते हैं लोगों की, तो उनको आप अपनी टीम में कैसे लेते हो फिर?
2: हम कोशिश कर रहे हैं कि हम, तो आपने जो सवाल पूछा ये कैपेसिटी बिल्डिंग के अराउंड है, तो हम देखिए थोड़ी सच्चाई ये भी है कि इंडियंस जो है ना वो उतना वॉलेंटियर करते नहीं है, और फिर करते हैं तो कमिटमेंट उतना नहीं होता है.
1: जी,
2: और इस काम में ना कमिटमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत सीरियसली लेते हैं वॉलेंटियरिंग, हम प्रॉपर ट्रेनिंग देने में यकीन करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कमी

0: कमिटमेंट की ज़रूरत होती है कि हाँ आप एक साल तक या आप एक एक दिन हफ्ते में हमारी कॉल्स ले सकते हैं, क्योंकि ये जो इश्यूज़ है ना ये बहुत सेंसिटिव हैं और हाईली स्टिग्मेटाइज्ड हैं
1: जी.
0: और हाँ उसमें ना वो पर्सनल बायसेस भी आ जाते हैं इन पिक्चर, तो उन सब चीज़ों को कैसे एड्रेस करना है, तो इसकी ट्रेनिंग जो है हम वी नो कि कहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, हम आपको वहाँ रेफर करेंगे, लेकिन उस स्टेप तक पहुँचने से पहले हम कमिटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं. वंस वी सी कि हाँ आप जेन्युइनली कमिटेड हो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, तब हम आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं और फिर आपको अपनी टीम से जोड़ते हैं.
2: सो देयर आर टू दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो जो वॉलंटियरिंग का बोला वसुंधरा जी ने उसमें, सो एक पैशन होना चाहिए कि कुछ करना है, और ट्रेनिंग है वॉलंटियर्स के लिए भी ट्रेनिंग होती हैं. एंड दूसरा एस्पेक्ट है जो स्टाफ है, अगर हमें वैकेंसी है नया स्टाफ रिक्रूट करना है तो ये स्टाफ हैज टू हैव बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन. सो या तो सोशल वर्क में डिग्री हो या कम्युनिटी सर्विसेज में डिग्री हो, सोशियोलॉजी सो साइकोलॉजी ऑल एनी रिलेटेड फील्ड, एंड देयर शुड हैव बीन सम एक्सपीरियंस वर्किंग एज वेल.
1: एग्जैक्टली, क्योंकि जो वॉलंटियर होते हैं उन्होंने सिर्फ कॉल ली और केस को आगे रेफरेंस तो वही कर सकते हैं जो स्पेशलाइज्ड होंगे उस चीज में.
2: नहीं, वो भी रेफर कर सकते हैं, बिकॉज जैसे मैं मान लो आई एम देयर, आई एम ओवरलुकिंग एवरीथिंग
1: जी,
2: और दो तीन वॉलंटियर्स हैं जिनको मैं सपोर्ट कर सकती हूँ
1: जी,
2: तो मैं हमेशा अगर वो कॉल लेते हैं दे कैन ऑलवेज टेल द पर्सन कैन आई कॉल यू बैक,
1: ओके
2: लेट मी टॉक टू द सुपरवाइजर और माय सीनियर. So then we will discuss. I will give them all the guidance.
1: जी.
2: कि अच्छा आपने कॉल ली, क्या हुआ, क्या इश्यू है, अब आप ऐसे ऐसे कर सकते हो. So then they can call back and they can take it forward.
1: जी, जैसे आजकल बच्चों में भी क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है, या जो पेरेंट्स आते हैं माइग्रेंट होके, जैसे जिनके बच्चे यहाँ पे है और पेरेंट्स आते हैं बच्चों के पास, तो कभी कभी वहाँ पे भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर नहीं करते. तो ऐसे केसेस भी आते हैं कि जहाँ पेरेंट्स आपको खुद अप्रोच करते हैं या कोई पेरेंट्स को आपके पास लेके आता है कि इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, बच्चे इनको पूछ नहीं रहे हैं, या क्योंकि वो तो बिल्कुल नए होते हैं, उनको तो कोई नॉलेज भी नहीं होती है, उनका लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास?
0: इन पास्ट हमारे पास आए हैं कि पेरेंट्स ने हमें कॉल किया है कि हमारे बच्चे सुन नहीं रहे हैं
1: जी,
0: या कुछ पेरेंट्स ने हमें फ़ोन करके ये बोला है कि वो बुलिंग फेस कर रहे हैं स्कूल में
1: जी,
0: तो क्या कर सकते हैं. और अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था कि फीस इतनी हाई है, हमारे एजेंट ने हमें बताया नहीं था कि हमें यहाँ पे फ्री गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलेगा
1: जी.
0: इवन गवर्नमेंट स्कूल्स
2: जो जो स्टूडेंट वीजा पे यहाँ आते हैं पेरेंट्स, तो स्टूडेंट उनके बच्चों को यहाँ पे स्कूल में इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस देनी पड़ती है
1: जी,
2: नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे सवाल भी आते हैं. पर जैसे आपने बोला पेरेंट्स जो एल्डरली पेरेंट्स को लेके आते हैं है ना, तो बहुत इतने तो नहीं आए हैं पर एक दो कॉल्स ज़रूर आए हैं. एक अभी रिसेंटली आया था, उसमें वो फादर वॉज वेरी कंसर्न्ड अपनी बेटी के लिए, वो काम कर रही थी फिर उनको कुछ इंजरी हो गई तो काम छूट गया, तो वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे और वो फादर क्योंकि वो यहाँ पहले रहे नहीं हैं
1: जी,
2: दे जस्ट केम टू सपोर्ट द डॉटर
1: जी,
2: तो उनको मुश्किल लग रहा था कि मैं काम नहीं, वर्क राइट्स नहीं है, यू नो टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं फॉर सम टाइम, तो कैसे हम लोग ये मैनेज करें, कहाँ से खाना लाएं, यू नो कोई एजेंसीज हैं जो कि हमें फूड वाउचर्स या यू नो ये सब दे सकते हैं, तो देन वी डायरेक्टेड देम कि आप कहाँ रहते हो, आपके एरिया में ये सर्विसेज हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं. तो वो भी हम पूछते हैं कि फिर आप ट्रैवल कैसे करोगे, क्योंकि आप तो डिपेंडेंट हैं कि वो नो आपकी बेटी ड्राइव करेंगी या उनके हस्बैंड हैं वो ड्राइव करेंगे, तो कहते हैं कोई नहीं हमने सीख लिया है कि बस में कैसे जाना है
1: जी.
2: तो वी फाइंड आउट कि क्या उनकी ज़रूरत है क्या नहीं, तो मान लो अगर उनको बस का भी नहीं पता है तो देन वील ट्राई एंड सी कि वॉट इज़ द क्लोजेस्ट थिंग, कैन दे टेक एन ऊबर और नॉट, इज इट पॉसिबल, इज इट फाइनेंशियली पॉसिबल और नॉट, तो काफ़ी सारी बातचीत होती है यू नो टू फाइंड आउट कि किस तरह से उनको बेस्ट सपोर्ट दिया जाए. हम लोग सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे
1: जी,
2: यू नो बिकॉज वी डोंट हैव सो मच ऑफ फंडिंग, फंडिंग नहीं है कि हमारे पास वाउचर्स हैं और हम उनको दें या यू नो थिंग्स लाइक दैट, बट लोकल सर्विसेज बहुत होती हैं हर एक एरिया में जो कि उनको बोलते हैं इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, सो वी विल यू नो कॉन्टैक्ट देम और डायरेक्ट देम टू कॉन्टैक्ट दोज पीपल एंड गेट द सपोर्ट.
1: जो यहाँ स्टूडेंट वीजे पे होते हैं कई बार उनको एजेंट्स बहुत एक्सप्लॉयट करते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, या वो कॉलेज में होते हैं वहाँ पे उनका रेसिज्म होता है या एक्सप्लॉयटेशन होता है, जॉब में होते हैं, तो जो ऐसे केसेस होते हैं वो भी लोग आपको अप्रोच करते हैं?
2: हाँ जी हाँ, करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो हम वही बोलते हैं कि आप प्लीज़ रिपोर्ट करें, चुप ना बैठें, बिकॉज जितना रिपोर्ट करोगे उतना लोगों को और पता चलेगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा।
1: जी
2: और जैसे यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ रहा है और वो कहते हैं, तो उनको कभी मालूम नहीं होता कि यूनिवर्सिटी में भी काउंसलिंग सपोर्ट मिलता है।
1: जी,
2: या यूनिवर्सिटी में ऐसे सपोर्ट्स होते हैं जैसे सेक्सुअल हरासमेंट है, तो उसके लिए भी फीमेल्स के लिए देयर बी अ स्पेशल सपोर्ट, तो वो उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होता है यूनिवर्सिटी में। तो वही हम बताते हैं कि प्लीज आप कॉन्टेक्ट करें उनको, यू नो, पूछें करें, एंड देन गेट द सपोर्ट यू नीड। देयर इज नो शेम इन गेटिंग सपोर्ट, दैट इज द मेन थिंग।
1: जैसे आपने बोला कि तकरीबन एक साल के आपके पास 300 केसेस आ जाते हैं, 300 केसेस तो हमारे सामने आते हैं, बाकी बहुत ऐसे हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं जो सामने ही नहीं आते हैं। तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ अपील करना चाहते हैं कि वो आपको, पहले तो आप अपनी हेल्पलाइन के बारे में दोबारा बोल देना अपना नंबर, ताकि लोगों को पता चल जाए और वो आपको अप्रोच कर सके, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं कि जिनमें उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर सके।
0: मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि आप ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से बार बार ना कंपेयर करें।
1: जी,
0: आपकी जो दिक्कत है यहाँ पे, जो सोशल वेलफेयर सेक्टर है ना, वो बहुत स्ट्रांग है।
1: जी,
0: सबसे बड़ा जो बजट का सेक्शन होता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का वो सोशल वेलफेयर में आता है।
1: जी,
0: तो एक तो अपनी, मतलब डोंट सफर इन साइलेंस। ज़्यादातर हमने ये देखा है कि लोग जो है ना वो अकेले सफ़र कर रहे होते हैं और वो नहीं सोचते, और वो मैं समझ भी सकती हूँ, वो इसलिए नहीं सोचते कि सपोर्ट होगा क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर सपोर्ट नहीं होता है, तो उन्हें लगता है यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं होगा, और फिर ऊपर से हम माइग्रेंट है तो हमें अपनी बहुत सारे और सिचुएशंस को डील कर रहे होते हैं और हम अपने बारे में इतना नहीं सोच रहे होते हैं। तो खुल के आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और वहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ बिग रोल, क्योंकि हमारे जो ट्रेन सोशल वर्कर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि इस वीज़ा पे या वो किस सिचुएशन में और वो एलिजिबल हैं या नहीं सपोर्ट सर्विसेज के लिए, तो वो आपको किसी भी तरह की जानकारी दे सकते हैं, और वो दे डिग डीपर इंटू योर इशूज एंड दे नो कि आपको इस तरह की सर्विसेज मिल सकती हैं।
1: जी,
0: तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ही ज़्यादातर जो लोग हैं वो सर्विसेज का फ़ायदा नहीं उठा पाते।
1: जी,
0: तो दैट्स वाई दे शुड बी एक्चुअली कॉलिंग इंडियन केयर एंड फाइंडिंग आउट कि उनको किस किस तरह की सपोर्ट और सर्विसेज मिल सकते हैं।
1: जी, तो आप अपना हेल्पलाइन नंबर दोबारा बोल दीजिए प्लीज़।
2: या इट्स 1300-005-040।
1: ओके, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और अपने ऑडियंस के साथ एक इंडियन केयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया कि जिसमें अगर लोग कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, और जिस हद तक आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं आप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द स्टूडियो। थैंक यू ध्रुमा जी, थैंक यू वसुंधरा जी,
2: थैंक यू सो मच।
1: सुनते एक प्यारा जहा गीत ते वापस आने स्टूडियो दे विच।

वापस आ गए हैं स्टूडियो दे विच ते तुसी सुन रहे हो सांझी आवाज़ रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न 88.9 विन FM ते लेके चलदे आ तुहानू महाराणी जिंदा दे सफर ते जो कि है नॉवल डॉक्टर ज्ञानी सोहन सिंह सीतल उन्हां दा लिखिया होया ते अज चलदे आ इहदे 11वें लड़ीवार ते जिस विचों लिखदे ने कि 6 अप्रैल नूं जिंदा चनार दे किले विच भेज दित्ती गई उदे सारे पुराने दास दासियां हटा दित्ते गए जो नवे नौकर रखे गए बिना काम उन्हां नाल गल करन दी भी आग्या नहीं सी जिंदा दा जीवन नरक नालों भी भैड़ा हो गया इस दोजख विच ओह 2 हफ्ते भी ना कट सकी जिंदा दे अंदर भांबड़ बल रहे सन बीतियां यादां दिल विच अंगियारियां वांग भखदियां सन ओह उठदियां आहियां नूं अंदर रोकदी तां अंदर सड़दा बाहर कढ़दी तो बाहर सड़दा वह सारी दी सारी दुख रूप बन चुकी सी वह आसमान दे तारियां वल वेखदी किसी काली बदली विचों कोई तारा डलकदा दिसदा तां रीसो रीस उहदियां कालियां अखां विच हंझू डलकौंदे वह आपे रोंदी ते आपे चुप कर जांदी इह उह जिंदा है जिस दे बुल्लां ते आई मुस्कुराहट शेरे पंजाब वास्ते जीवन अमृत हुंदी सी जिस दे मत्थे दी त्योड़ी सामने हजारां सूरमियां दियां कमानां चुक जांदियां सन जिस दियां अखां विच आए हंझू पृथ्वी ते भुचाल लिया दिंदे सन अज ना उहदे हासियां विच कोई करामात है ना हंझूआं विच तासीर उह हसे तां अपने आप नूं धोखा देण बदले रोवे ते अंदर बलदी ते तेल पाउण वास्ते हंझू सदा इक्को भा नहीं विकिया करदे कदे इह मोतियां तों महंगे हुंदे हन ते कदे त्रेल दियां बूंदां तों वी सस्ते कई वार ओह रेत रात नूं लेटी लेटी सोचण लग पैंदी मैं इस कैद विच किन्ना कु चिर कट सकदी हाँ मैं कैद क्यों हाँ बंदीखाने सदा उन्हां वास्ते हुंदे हन जो बंदी रहना परवान कर लैण मैनू इह कैद परवान नहीं मैं कैद नहीं रहांगी पर इस विचों आज़ाद किवें होवां अंदर फुरने जागे मन बनिया तां आजाद होण दा रस्ता भी सुज पिया 18 अप्रैल दी अद्धी रात वेले ओ उदासी संतनी वांग भगवां वेस करके किल्यों बाहर निकल तुरी बूहे अगे खले पहरेदार ने पुछया कौन है जंगल में रहने वाली उदासी संतनी हूँ महारानी ने धर्म उपदेश लेने के लिए बुलाया था दिन को आने की आज्ञा नहीं मिली थी इसलिए रात को चोरी चोरी आई हूँ महारानी को धर्म की देख्या देकर उसी तरह चोरी चोरी जाना चाहती हूँ इस धर्म के काम में मेरी सहायता करोगे तो ईश्वर तुम्हें इसका फल देगा जिंदा ने संतां वाली बोली विच उत्तर दिता पहरेदार बिल्कुल नवा सी वह जिंदा दी आवाज पछाण ना सकिया उन्हें दिल विच सोचिया जे मेरे अफसरां नूं पता लग गया कि बाहरों कोई चोरी चोरी महाराणी नूं मिलन आउंदा है तां पता नहीं मैनूं की सज़ा मिलेगी बेहतर यही है कि जिवें इह चोरी आई है उसे तरह चोरी चली जावे ना इहनूं तीसरी अख वेखे ना मेथों कोई पुछ पड़ताल होवे उन्हें फिर ना आउण दी ताड़ना करके जिंदा नूं लंघ जाण दिता पहरेदार दा डर ते जिंदा दी दलेरी उस दी रिहाई दा वसीला बणे किल्यों बाहर निकल के जिंदा दे सामने वगदी नदी विच छाल मार दिती लहरां नाल लड़दी ते अपनी तकदीर नाल घोल करदी अंत ओ नदियों पार हो गई उधर दिन चढ़िया जिंदा दे नस जाण दी खबर वड्डे अफसरां नूं पहुँच गई ते ओ घबरा उठे सरकारी सिपाही शिकारियां वांग जिंदा दी भाल विच निकल तुरे हुण जिंदा वास्ते बहुत मुश्किल बनी दिने ओ झाड़ां विच लुक के कटदी ते रात नूं जिस पासे मूँह हुंदा पंद पै जांदी ओह दुनिया दा अनोखा राही सी जो तुरिया जा रिहा सी पर अपनी मंजिल तो जाणू नहीं सी रात दे हनेरे विच ओह दरख्तां दे संघणे परछावें हिलदे वेखदी तां उहनूं वैरी दे सिपाहियां दा भुलेखा पैंदा हवा दे तेज बुल्ले बिरछां नूं चीरदे छां छां करदे लंघदे तां उहदे कन्नां विच दुश्मन दियां गोलियां दी गूंज अनुभव हुंदी पैर थल्ले आ के कोई सुक्का पत्तर टुट जांदा तां दुखियां दा दिल टुट जांदा
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੀ ਤਿਹਾਈ ਭਟਕਦੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇਉਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿਲੇ ਚੁਨਾਰ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੰਦਾ ਜਾ ਨੇਪਾਲ, ਤਨ ਲਟਕਣ ਲੀਰਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਵਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਟ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਦ ਹਲਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਦੇ ਤੁਲਦੀ ਲਾਲਾ ਨਾਲ, ਵਿੱਚ ਰਾਣੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ, ਕੱਲ ਹੀਰੇ ਕਰਦੀ ਦਾਨ ਸਾਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ, ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਉਸ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਇੰਦਰ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਝਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਭਬਕ ਡੁਲਾਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਉਣ ਭੁਚਾਲ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਫਾਇਆ ਜਾਲ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਦਲੇ ਭਟਕਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰਨੀ ਜਦ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਣਗੇ ਹਾਲ। ਜਿੰਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਿਥਾਵੀਂ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਭਾਅ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਖਟਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੈਦ ਬਨਾਰਸ ਜਾਂ ਚੁਨਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਸਹਿ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਨਿਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਨਿੱਤ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਦਾ ਅਸਲੋਂ ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 88.9 WIN FM।